0: ये है लाइका रेडियो। सीटीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम, प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर। इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुजर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: Are we there yet?
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
1: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
1: I switched to Simzy before we left London.
2: Simzy? Since when are you the tech expert?
1: Since I decided I want a stress-free holiday.
3: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
1: T's and C's apply.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Laika Radio और Laika Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
0: Easing you through the night with London's biggest hits.

0: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

Spiker Radio. अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Laika Radio.

मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट

असंक अमर कर जाए जोर, असंक गलवड हत्या कमाए, असंक पापी पाप कर जाए, असंक कूड़े आर कूड़े फिराए, असंक मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचा।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख लख

जोर ना जुगती छुटे संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

0: Weekend Breakfast is sponsored by Here Are Foods, specializing in all your kitchen needs, including spices, lentils, rice, and flour. Here Are Foods, king in quality, king in taste.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: At Aldi, we think low prices are for everyone. And boy, do we mean everyone. You, your nan, your cockapoo, your ex-situationship, Barbara from next door, traffic wardens, Piers Morgan, even that annoying guy James from finance. Yep, low prices should be enjoyed by all, not just those with a membership, what's it? So Aldi don't do one. No points, no cards, no faff. Aldi, which cheapest supermarket, even without a loyalty thingy?
5: The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. One night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
6: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
5: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
6: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasam.
5: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
8: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Keep calm.
10: 15th मई को प्रजापति पांडे लेकर आ रहे हैं फुल ऑन कंफ्यूजन और डबल धमाका। कौन पत्नी कौन वो? सवाल बहुत है, आंसर्स और भी एंटरटेनिंग। पति पत्नी और वो दो परिवार के साथ देखिए 15th मई से सिनेमाज में।
11: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रहे छे।
12: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग और स्टार टूर्स तमने लई जाई रहे छे आप पवित्र यात्रा पर।
11: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
12: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली और जर्मनी साथे।
11: दर्शन पण और यूरोप पण।
12: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ही बुक करो स्टार टूर साथे।
11: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स।
12: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन।
13: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला। प्री ऑर्डर बिफोर द 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code Early Eve Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
14: Atif Aslam live in the UK.
13: Studio 2 London on Sunday the 14th of June.
14: Book your tickets now at AXS. Exclusive radio partner Leica Radio.
15: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.

0: Asia Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: ZTV HD पर देखिए तुमसे तुम तक।
2: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
2: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
3: मैं ही राजीव भाटिया हूँ।
1: तुमसे तुम तक रोज रात 8:30 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: अब लंदन बैठे मिलेगा एशियन एथनिक स्वाद इंस्टेंटली थैंक्स टू जर्मिन फूड्स।
5: जस्ट एड हॉट वाटर, वेट फॉर 5 मिनट्स एंड टेस्टी एथनिक रेसिपीज लाइक साबुदाना खिचड़ी, शीरा, पोहा, भाजी, वेज बिरयानी, दाल भात आर रेडी टू सर्व ऑन योर प्लेट।
4: जीरो मेस, नो स्ट्रेस, सेम एथनिक टेस्ट विद जर्मिन फूड्स।
6: Looking for your next cruise getaway?
7: Explore the Mediterranean, Northern Europe, the Caribbean, or even around the world. With Travel in Style, every trip is tailored to you.
6: From relaxation to adventure. Call 0208-954-0077
7: or email info@travelinstyle.co.uk.
6: 24/7.
7: Travel in Style.
6: Where your dream holiday begins.
8: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter, and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
9: Mantra Holidays.
10: What's your travel mantra?
7: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code EARLYEEDSAVER online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and moti chur laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
11: Al Noor, Purana Baitamat Nam. Nayi range ke saath. Premium pulses. Pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak. Aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor. Taste the difference.
12: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Echo microwave food containers.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our रेडियो
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: cut.
1: Advice.
2: Or you could go to MedExpress. MedExpress. Healthcare without the noise. Go to medexpress.co.uk/weightloss.
3: Ali 60 milligram hard capsules contain orlistat for overweight adults with a BMI of 28 plus. Follow a reduced calorie, low fat diet. Always read the label.
4: अरे चंचल कुमारी, साइको ऑनर, शहर इलाहाबाद से प्रयागराज हो गया. लॉन्ग टाइम, कैसी हो तू?
5: खातून कौन थी?
6: एक्चुअली वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है, डोमेस्टिक वायलेंस.
5: तो पुलिस में जाती, वन विभाग में क्या करने आई थी? इस हर पति एनिमल.
7: एक पति दो दो कंफ्यूजन और फुल फैमिली एंटरटेनमेंट. 15th में से प्रजापति पांडे मचाएंगे ऐसा बवाल कि आप भी पूछेंगे कौन पत्नी कौन वो. पति पत्नी और वो दो इन सिनेमाज नेशनवाइड फ्रॉम द 15th ऑफ मई.
8: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.40% on non-withdrawable fixed deposits. Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TLCs apply.
9: Ek badhiya कड़क गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो आए हाय मजा आ जाए.
10: अरे समझो, हो गया. रॉयल चाय है ना, अब भी बन जाएगी. सिर्फ पैकेट खोलो और गर्म पानी में घोल लो, चाय तैयार, वो भी रॉयल टेस्ट के साथ. रॉयल चाय, झटपट, कहीं भी, कभी भी.
11: આ સપ્ટેમ્બર પેરિસ માં ઇતિહાસ લખાઈ રહ્યો છે.
12: બીએપીએસ મંદિર નું ઓપનિંગ અને સ્ટાર ટૂર્સ તમને લઈ જઈ રહ્યું છે આ પવિત્ર યાત્રા પર.
11: યુરોપ ના 3-9 દિવસ ના ટૂર,
12: ફ્રાન્સ, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, ઇટલી અને જર્મની સાથે
11: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ.
12: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજ જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે.
11: કોલ 02089002323. ધ સ્ટાર ટૂર્સ,
12: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન.
13: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
14: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स.
13: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स.
14: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, देसी स्वैग इन एवरी बैग.
15: अ रिलायबल एयरलाइन, excellent in-flight entertainment and delicious food, all this at a low price. Connect with Travel in Style, great choice of airlines to exciting destinations. Match your style to your budget only at Travel in Style. 0208 954 0077.
16: This Eid, skip the queues and save with Ambala. Pre-order before the 10th of May and enjoy 20% off your order. Use code Early Eid Saver online or in store. From stunning gift tins to rasmalai and multi jewel ladoos. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
17: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
18: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash and Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
3: साउथ हॉल ट्रेवल
2: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: वीजा प्रॉब्लम? इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं। अभी कॉल करें 02089072444। दैट्स 02089072444।
5: Want magic in every bite? Grab Hero Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hero Foods, king in quality, king in taste.
6: 90s throwback plays now.

0: 8782883 or visit travelhubworld.com.
1: Travel Hub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit travelhubworld.com.
2: At Aldi, we think low prices are for everyone. And boy, do we mean everyone. You, your nan, your cockapoo, your ex-situationship, Barbara from next door, traffic wardens, Piers Morgan, even that annoying guy James from finance. Yep, low prices should be enjoyed by all, not just those with a membership, what's it? So Aldi don't do one. No points, no cards, no faff. Aldi, which cheapest supermarket? Even without a loyalty thingy.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Sade dasve Guru Govind Singh Ji Maharaj da pavitr janam sthan Takhat Shri Harminder Ji Patna Sahib de live darshan dekho. Sirf Z Punjabi Sky 769 te Virgin Media 811 te. Roz savere 3 vaje ton 8 vaje tak. Sirf Z Punjabi te hi.
6: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाएं जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
7: राइस कॉर्न से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट जैमिन पफ बाइट्स, जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन साल्सा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
6: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
8: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
10: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
11: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This week's number one on the Leica Radio Network Chart Show. Tune in every Saturday at 4 p.m. with Niraj across the Leica Radio Network.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: Leica Radio. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: That is correct. £1 in British sterling today could get you up to 128 Indian rupees. So please remember, you can make your transfers via branch, online, or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Anika on Leica Radio.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: हैव यू स्पॉटेड एनीथिंग?
6: Seagulls. Are you sure this beach is a nature reserve?
5: Well, the sign said nature this way. Hey, what's that big bird over there? Flapping its wings, unusual markings.
6: You sure that sign didn't say naturists?
7: Oi, this is a nudist beach.
6: Ooh. Now, where are my binoculars?
5: Cheryl?
8: Struggling to read in the sun? Get 2-for-1 at Specsavers and make prescription sunglasses your second pair. From £70 with standard single vision lenses to the same prescription. Terms and conditions apply. See in store for details.
9: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आप इच्छे कंपाला नाइरोबी मुंबासा जंजीबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स
10: बस पैक करो अनि रिलैक्स થઈ જાઓ
9: કેમ કે આપની સફર અમારી સફર છે વધુ માહિતી માટે
10: કોલ કરો દીપ્તિ પંડ્યાને
9: 01162662481 પર વધુ માહિતી માટે લોગ ઇન કરો sirinholidays.co.uk પર
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Saprang Arts presents Ramjhat in association with Leica Radio Network on Saturday 30th of May at 7 p.m. Join us at the Millennium Center, Waldingham School, CR37YA for a joyful journey into the heart of Gujarati music and dance. Timeless Garba, cherished folk songs and stunning live dance performances. An evening where music unites and traditions shine. Book now at ticketsource.co.uk or call 07977 6869444.
12: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद, हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद.
13: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जेमिन्स फ्राइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यमियस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट.
12: जेमिन फ्राइम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
14: आ सप्टेम्बर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे.
15: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर.
14: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
15: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अने जर्मनी साथे
14: दर्शन पण अने यूरोप पण.
15: सीट्स जल्दी भराई रही छे, आज ज बुक करो स्टार टूर साथे.
14: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स.
15: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन.
16: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला. प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% ऑफ योर ऑर्डर. यूज कोड अर्ली ईद सेवर ऑनलाइन or in store. From stunning gift tins to rasmalai and motichur laddus, don't wait. The offer ends on the 10th of May.
17: Al Noor Purana Baitmat Nam Nayi range ke saath premium pulses, pure, fresh, full of natural goodness. Everyday dal se lekar wholesome meals tak aapke Asian grocery stores par available hai. Al Noor, taste the difference.
18: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
19: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel, and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
1: This song is brought to you by Kumar Sanu, live at Royal Albert Hall with exclusive radio partner Leica Radio. One date only, May 25th.

0: Cheshire Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: ZTV HD पर देखिए तुमसे तुम तक।
2: बस कुछ ही दिन और रहो, फिर हमारा भी मंडप सजेगा।
1: क्या इन दोनों के प्यार को लग जाएगी किसी की नजर?
2: आर्यभट्ट अगर नील और सिमरन की शादी होते देखना चाहता है तो सभी के सामने खुल के बता तू कौन है और तूने क्या किया है।
3: मैं ही राजीव भाटिया हूँ।
1: तुमसे तुम तक रोज रात 8:30 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
4: हल्के फुल्के मोमेंट्स को और भी खास बनाए जैमिन स्नैक्स के हल्के फुल्के पफ बाइट्स के साथ।
5: राइस कौन से बने लाइट और क्वालिटी में बेस्ट? जैमिन पफ बाइट्स जो है बारबेक्यू, लेमन चिली, मस्त मसाला और मैक्सिकन सालसा जैसे फ्लेवर्स में अवेलेबल।
4: जैमिन पफ बाइट्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
6: Travel in Style specialize in holidays to Sri Lanka. We offer tailor-made packages to suit your needs. Match your style with Travel in Style. Call 0208 954 0077. That's 0208 954 0077. Fully bonded, Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style. Travel in Style.
7: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
8: Mantra Holidays.
9: What's your travel mantra?
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply. From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
11: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
12: Next, Messer with the Sunday Wrap on Leica Radio. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.

0: नया ककर बेनेडियल एंड इट्स योर बॉय बादशाह
1: सैया तेरा ट्रिपी ट्रिपी
0: इट इज ट्रिपी ट्रिपी स्टफ इंडीड देयर फ्रॉम Bhoomi 2017 वन ऑफ द आंसर्स फॉर अ थ्री कोर्स मील दिस आफ्टरनून सनी लियोनी फिल्म्स वंस अगेन इफ यू मिस्ड इट द थ्री फिल्म्स आई वाज आफ्टर शूट आउट ऑफ वडाला Bhoomi एंड मोतीचूर चकनाचूर सो वेरी वेल डन इफ यू गॉट द आंसर्स ओवर देयर राइट इट इज टाइम टू साइन ऑफ देन फ्रॉम संडे शोडाउन थैंक यू सो सो मच एवरीबॉडी फॉर कीपिंग मी कंपनी ओवर हियर ऑन द शो दिस आफ्टरनून गोइंग इनटू दिस इवनिंग होप यू हैव अ great end to your Sunday and a great start to your Monday and to your week ahead. Up next, Messer with the Sunday Wrap coming at you with some wonderful tunes. So keep it locked to Like Radio London, Like Radio Midlands, or else on Gold. We've got Ubby sitting in for Sandy doing his vintage thing on Like Gold over there, or else Jazzy J on Like Radio Greater Manchester with some great tunes for you Sunday evening. So keep it locked over there. I shall catch you around next weekend. For Like Radio Network Chart Show and for Sunday Showdown, as always, closing things out with Yo-Yo Honey Singh, this one from the album Glory, featuring The Shams and Bonita, a very bonny track to finish things off on. Catch you next weekend. Bye.
1: Yeah.

0: जिंदगी दो पल की, ऑफ कोर्स इस दो पल की जिंदगी को प्यार और मोहब्बत से ही बिताना है। वेलकम टू द संडे रैप विद मी मेसा ऑन लाइक अ रेडियो 14:58 AM in Greater London, DAB Digital Radio, across the Midlands, Alexa, Google Home, LaikaRadio.com और Laika Radio mobile app पर आप हमें सुनते हैं। शो के स्पॉन्सर्स हैं द वेरी अफोर्डेबल ट्रैवल वेबसाइट tickets2india.co.uk, जहां आपके लिए हैं बहुत सारे अमेजिंग से डील्स ऑन फ्लाइट्स टू इंडिया एंड अदर डेस्टिनेशंस एज वेल। So do check it out next time you want to book your holiday. So kya haal hai aap sabka? Yes, we started the show with two amazing tracks. Dostana movie se khabar nahi and Zindagi do pal ki from Kites. I hope you guys enjoyed that one. Aur ab to ye shuruaat hai guys. There's lots of beautiful heartwarming numbers still lined up for you on the show this evening. Saath saath hamara romantic hour hoga 8 se 9 baje ke beech. Do bahut hi beautiful and non-film me numbers to take you back in time, the Pakistani hit of the hour in the third hour of the show, and hamare do fun games, join the dots and catch me if you can. Ye sab kuch hone wala hai, so bahut maza aayega, kahin mat jayega, stay tuned only to Laika Radio.
1: WhatsApp Laika Radio Greater London now on 07424 22 22 22. This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Laika Radio and Laika Gold.

0: there, taken from the movie Kya Kehna. Hariharan and Kavita Krishnamurti ji on the vocals of that one.
1: Leica Radio.
2: Join the dots with Mesa.
1: Leica Radio.
0: Yes, it's time now to kickstart our fun game, Join the Dots, जो मैं आपके साथ खेलती हूँ on my show every weekend. मजा तो आता है ना? I mean, it's just so amazing when you guys actually take part and make it all fun. वरना, you know, मैं बस एक fun game करूँ and कोई response ना दे, कोई interested ना हो, इसे तो मुझे भी बोरियत होगी ना. Come on, हमेशा की तरह आज भी एकदम you know अपने जो minds हैं उसको एकदम आपने you know refresh करना है and कम से कम क्लूज में आपको आज की जो मूवी है उसे पहचानना है. बड़ा ही सिंपल सा गेम है. आई एम गोना गिव यू क्लूज अबाउट अ बॉलीवुड फिल्म एंड यू हैव टू गेस विच मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आई एम गोइंग टू गिव द फर्स्ट क्लू नाउ. ध्यान से सुनिएगा. आज की जो मूवी है 1998 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. And there is something special about this film, कि इस फिल्म में लीड हीरो हैं बॉलीवुड के भाईजान. And he has his other two brothers as well as part of this film. One brother is acting in the movie along with him, while the other brother is this film's director. और फिल्म की हीरोइन की बात करूँ तो एक बहुत ही पॉपुलर एंड बबली एक्ट्रेस हैं, जिनकी मम्मी और हस्बैंड दोनों भी पॉपुलर फिल्म सेलिब्रिटीज हैं. डू यू वांट टू गिव इट अ गेस? सेंड इट इन. 1998 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसके हीरो हैं बॉलीवुड के भाईजान एंड हिज अदर ब्रदर्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. सेंड इन योर गेसेस ऑन दिस नंबर.
2: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424 22 22 22. Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: featuring the Laika artist of this week, Harshdeep Kaur, who was born to a family of musicians. Our music se unka introduction hua tha at the very young age of just 6 years. Phir unhone Indian classical music ke saath Western classical music bhi sikha. And then she went on to win 2 popular singing reality TV shows, जहाँ यू नो उन्हें रिकग्निशन मिला एंड वहीं से उनकी प्रोफेशनल जर्नी शुरू हुई एंड इट इज़ यू नो हर म्यूजिकल करियर विच इज़ बीन वी आर सेलिब्रेटिंग इट ऑन Laika रेडियो इन दिस एंटायर वीक बिकॉज शी इज़ द Laika आर्टिस्ट ऑफ दिस वीक एंड आई मस्ट से कि हर्षदीप कौर जो हैं शी हैज़ प्रूवन हर मेटल एज अ रिकग्नाइज प्लेबैक सिंगर बट उनकी एक बहुत ही खास बात ये है दैट शी ब्रिंग्स हर यूनिक सूफी ट्विस्ट टू टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग्स विच आई जस्ट लव डोंट यू टू आवर Laika आर्टिस्ट ऑफ दिस वीक द अमेजिंग हर्षदीप कौर और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि फ्रैंकी गोज टू बॉलीवुड जी हाँ दिस अमेजिंग स्टेज म्यूजिकल इज हियर एंड इट इज़ ऑन टूर एंड 6 मई से 9 मई तक न्यू थिएटर पीटर ब्रो में ये यू नो ये म्यूजिकल हो चुका है लेकिन यू हैव नॉट मिस्ड इट क्योंकि इट्स हैपनिंग अगेन बिटवीन 12 मई एंड 16 मई एट डर्बी थिएटर इन डर्बी सो टिकट्स आर अवेलेबल एट rifcotheatre.com डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
1: Laika Radio. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration and expertise. Where you can laze in luxury.

0: Like a Radio.
1: A beautiful track there from Haseena Manjayegi, 1968 की release going out especially to my dad क्योंकि आज उनका birthday है and this is one of his favorite tracks and इस film के director जो हैं प्रकाश मेहरा जी उनके हवाले से एक बड़ी interesting सी मुझे बात पता चली during the making of Haseena Manjayegi. So Kader Khan sahab, we all know him. He was a very prominent Indian actor and a screenwriter and also a film producer, in fact. So, unhone apni jo first meeting thi Prakash Mehra sahab ke saath, usse describe kiya hai ek interview mein. Unhone kaha ki, he was teaching in Sabu Siddiq College. Jab unki mulaqat hui Prakash ji se. Aur Prakash ji jo hai, he was shooting for Haseena Manjayegi in the college. Aur wo अपने किसी एक डायलॉग से फिल्म के डायलॉग से खुश नहीं थे सो ही पुल्ड कादर खान जी आउट ऑफ हिज लेक्चर एंड आस्क्ड हिम वेदर ही कुड फिक्स सम ऑफ द लाइंस इन द फिल्म और जो काम उन्होंने किया यानी कादर खान साहब ने किया प्रकाश जी बहुत खुश हो गए उससे एंड ही सेड दैट इट डेफिनेटली नाउ साउंडेड लाइक अ प्रॉपर फिल्म डायलॉग और फिर वो दैट्स इट वो मुलाकात हो गई एंड देन उनकी मुलाकात फिर से प्रकाश जी से एक फिल्म स्टूडियो में हुई एंड उन्हें याद आया कि ये तो वही है कादर खान साहब जहां उनसे कॉलेज में मुलाकात हुई थी एंड देन कादर जी डिड हिज फर्स्ट फिल्म फॉर प्रकाश साहब व्हिच वाज खून पसीना एंड आफ्टर दैट ही वेंट ऑन टू राइट मूवीज लाइक लावारिस एंड मुकद्दर का सिकंदर वाओ अमेजिंग है ना व्हाट अ ब्रिलियंट टैलेंट है प्रकाश साहब एंड कादर खान
0: जी है
2: लाइका रेडियो
0: Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
1: And the romantic hour continues with this brilliant track from the movie Airlift. Enjoy.

0: Rika Radio.
1: I told you that it's going to be only about beautiful, heartwarming numbers on my show, The Sunday Wrap. You're listening to me, Mesa, on Rika Radio, 1458 AM in Greater London, DAB Digital Radio across the Midlands. Alexa, Google Home, RikaRadio.com. और द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप, ये सभी तरीके हैं जिससे आप हमें सुनते हैं. एंड ऑफ कोर्स लाइक यू नो कि लाइका रेडियो मोबाइल ऐप पर आप सिर्फ हमें ही नहीं सुनते, लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन के साथ साथ लाइका रेडियो मिडलैंड्स है, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर है, लाइका गोल्ड यूके का जो नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन है वो है. इसके अलावा यूके's फर्स्ट 90s बॉलीवुड म्यूजिक स्टेशन लाइका रेडियो 90s है, लाइका रेडियो पंजाबी एंड लाइका गोल्ड टू. सो ये सारी चीजें जो है मुकम्मल हो पाई हैं बिकॉज ऑफ योर लव, बिकॉज ऑफ योर यू नो सपोर्ट जो आपने हमें दिया कि लाइका रेडियो नेटवर्क आज इतना कुछ कर पाया है. लेकिन हमेशा की तरह मैं आज भी यही कहूँगी कि आप हैं तो हम हैं, तो हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए. एंड शो में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. जॉइन द डॉट्स गेम हमने खेली एंड वी हैड लॉट्स ऑफ फन, डिडंट वी. तो इस आवर में भी आई हैव अनदर गेम फॉर यू, इट्स कॉल्ड कैच मी इफ यू कैन, वो भी खेलेंगे. और साथ साथ इस आवर में लाइका चार्ट टॉपर होगा. योर पाकिस्तानी हिट ऑफ दिस आवर इज अ ब्रिलियंट ट्रैक, डोंट मिस दैट वन. योर इंडी पॉप हिट इज अनदर ब्यूटिफुल वन, गजल इन द वोकल्स ऑफ जगजीत सिंह साहब. एंड for now, let's get going with Catch Me If You Can.
0: Catch Me If You Can with Mesa.
2: Rika Radio.
1: Catch Me If You Can game khelte hain abhi. For those of you who know it already, I'm, you know, like excited for you guys. But for those of you who are new to the show, let me tell you that it is gonna excite you as well. Is game mein, main aapki Bollywood lyrical knowledge test karti hoon. कि आप अपने जो गाने हैं जिसे हम बार बार सुनते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारा फेवरेट गाना है, वो गाना बहुत ही प्यारा है, मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स को कितनी अच्छी तरह से यू नो लिरिक्स वाइज जानते हैं. सो आई एम गोना रीड आउट थ्री सॉन्ग लाइंस और उनमें से किसी एक गाने में मैं करूँगी एक छोटी सी गड़बड़ और आपको पहचानना है कि मैंने किस गाने में गड़बड़ की है. तो पहला गाना है कजरा रे तेरे कारे कारे नैना फ्रॉम बंटी और बबली. दूसरा गाना है तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ फ्रॉम बरसात. और तीसरा गाना आ जाना छूले मेरा कंगना सनम, कुछ ना मैं बोलूं तुझे मेरी कसम फ्रॉम द फिल्म बीवी नंबर वन. अब किसी एक गाने में मैंने की है बड़ी यू नो छोटी सी एक गड़बड़. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस व्हिच सॉन्ग दैट इज. सेंड इन योर आंसर्स टू दिस व्हाट्सएप नंबर.
0: WhatsApp Rika Radio Greater London now on 07424 22 22 22.
3: Star Track of the Hour sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: This is Leica Radio.
1: At Aldi, we think low prices are for everyone. And boy, do we mean everyone. You, your nan, your cockapoo, your ex-situationship, Barbara from next door, traffic wardens, Piers Morgan, even that annoying guy James from finance. Yep, low prices should be enjoyed by all, not just those with a membership, what's it? So Aldi don't do one. No points, no cards, no faff. Aldi, which cheapest supermarket, even without a loyalty thingy?
2: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा जांजिबार अनि दार एस सलाम साथे जिंजा अनि मचिसन फॉल्स
3: बस पैक करो अनि रिलैक्स થઈ જાઓ
2: કેમ કે આપની સફર અમારી સફર છે વધુ માહિતી માટે
3: કોલ કરો દીપ્તિ પંડ્યાને
2: 0116262481 પર વધુ માહિતી માટે લોગ ઇન કરો sirinholidays.co.uk પર
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 0208574 8410
4: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू इसे अकेले फेस मत करें कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 आज ही एक्शन लें 0208-907-2444
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
10: दिस ईद स्किप द क्यूज एंड सेव विद अंबाला प्री ऑर्डर बिफोर द 10th ऑफ मे एंड एंजॉय 20% off your order. Use code Early Eve Saver online or in store. From stunning gift tins to Ras Malai and Moti Chur Laddus. Don't wait. The offer ends on the 10th of May.
0: Bollywood romantic hits throughout the night. This is the Love Sound.

0: Breaker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. The wait is now over. The King of Melody, Kumar Sanu, live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
1: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
0: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
1: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
0: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujjar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Oh, you want weight loss advice?
6: Weight loss? Actually, what you want to do...
7: I got my weight loss secret from my mother, who got it from her mother's...
5: My tip
7: weight
5: is...
7: Weight loss?
5: I don't forget that. You just
7: keep dancing.
5: Dragon fruit.
6: Podcast.
8: Advice. Or you could go to MedExpress. MedExpress. Healthcare without the noise. Go to medexpress.co.uk/weightloss.
9: Ali 60 milligram hard capsules contain orlistat for overweight adults with a BMI of 28 plus. Follow a reduced calorie, low fat diet. Always read the label.
10: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए
11: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों
10: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी
11: गारंटेड
10: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती लाके दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे साउथ हॉल ट्रेवल
11: फोन 02085748410
10: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410 एट ऑल प्रोटेक्टेड
12: आ सितंबर पेरिस में इतिहास लिखाई रह्यो छे
13: बीएपीएस मंदिर नो ओपनिंग अन स्टार टूर्स तमने लई जाई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर
12: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स
13: फ्रांस स्विट्जरलैंड इटली अन जर्मनी साथे
12: दर्शन पण अन यूरोप पण
13: सीट्स जल्दी भराई रही छे आज ज बुक करो स्टार टूर्स साथे
12: कॉल 02089002323 द स्टार टूर्स
13: ट्रैवल वंस एंड यू विल ट्रैवल अगेन एंड अगेन
14: पैक्ड फॉर द ट्रिप गिफ्ट्स पासपोर्ट
15: चेक जस्ट ड्रेडिंग दैट फोन बिल व्हेन आई गेट बैक फ्रॉम इंडिया रोमिंग इज अ नाइटमेयर
14: मेट यू Doing it wrong. Just get Simzy.
15: Simzy?
14: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
16: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
17: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर platform पर आपका brand चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या email sales@leicaradio.
18: Leica Radio.
19: Time for another Leica Love Classic.